चार कोश में सास संज्ञा जी, धार कोश, रिश्मि कोश, सूर्य कोश, चंद्र कोश, उन्होंने आराम दिया जा रहा मिक्स करके सारे।

गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुरग मच पयाले, गावन तुदनो रतन उपाए तेरे, आठ साठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खानी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जो तुद पावन,

गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम न पाया ते बागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर

भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरुष परम पुर करता जी तुद जीव

राज दीनी। कहूं भूल राजा अब बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर गैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम पब, आदि जुगाद स्वरूप सुजम पब।

0: the tenth guru, Guru Gobind Singh Ji was told by Bhai Jata Ji that after the execution of Guru Tegh Bahadur Ji, nobody came forward to take the body of Guru Ji due to the fear of death. At this, Guru Gobind Singh Ji expounded in Sangat that he would create such a rare human being who would embrace death as happily as a bride. In the gathering of hundreds and thousands on the Baisakhi day of 1699 AD, a naked sword shone and shook in the uplifted right hand of Guru Gobind Singh Ji. In a loud thundering voice, Guruji said, "This sword wants to taste the bread of the sick. Is there anyone to offer his head?" Bhai Diya Ram, a Khatri of Lahore, rose and said, "O true Guru, my head is at your feet." Guruji took him into the tent and beheaded him. Guruji came out and again, in a voice as of thunder, called out, "Is there any another Sikh to offer his head?" Bhai Karam Das, a Jat of Delhi, rose and said, "O true King, my head is at your service." He was also taken into the tent and was beheaded. All succeeding courts from Guru Sahib, Bhai Mokam Chand, a washerman of Dwarka, Bhai Sahib Chand, a barber of Bidar, and Bhai Himat Rai, a water carrier of Jagannath, stood up and offered their heads to the true King. Guruji took them into the tent, beheaded them, and made them the five beloved ones. After a while, Guruji came out of the tent, followed by his five beloved ones. Then he knelt before them and requested them to baptize him with the holy Amrit, thus demonstrating a supreme type of divine democracy. The five, in the form of Guru, baptized the true King with the holy Amrit. Vare pragate mad agamana, vare ram akela, वाह वाह गोविंद सिंह आप
1: कलगी पातशाह ने फिर उसे आनंदपुर साहब विखे फरमाया कि है प्यारे सिखो जदों गुरु नानक देव जी महाराज ने सिखी की पहल की थी तो उदो केवल एक सिख नित्रिया सिंह भाई लहणा जी ते अज मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि सिख कौम चढ़दियां कलां विच जा रही है क्योंकि अज तुसी एक नहीं पंज मित्र के सामने आई हो कलगी पातशाह ने फिर पंजा प्यारां दे अगे अपनी घुटनी टेक के हाथ जोड़ के बेनती की अमृत मेनू भी दो गुरु खालसा जी अमृत मेनू भी दो गुरु खालसा जी गोविंद आख्या पंजा प्यारां नू मैनू पंच दे इश्क दी चढ़े रंगत मैं भी मालना रबी खुला कहिंदे ने पंजा प्यारां ने ना कर दित्ती सिर मार दिता कहण लगे इन्ना सस्ता नहीं कहा पंजा प्यारिया ने पता देना कहा पंजा प्यारिया ने पता देना सौदा किस पापे बन जा रहा नु तकल की तर पातशाह हाथ जोड़ के बेनती कर लगे गोविंद कहा रब गवाह मेरा गोविंद कहा रब गवाह मेरा बोले बोल के पूरने पा देंगा एक एक तीर सीधा तुसा पंथ ले सिंगो मैं कुल सरबंस लुटा कलगी तर पातशाह ने कहा सिखो मेनू गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना दो मेनू इस अमृत की दात तो वांझा ना करो कलगी तर पातशाह जिस तरह अमृत की कुट प्राप्त करने वास्ते पंजा प्यारिया के अगे बेनती कर रहे हैं और समय के अनोखे दृश्य को ढाई शताब्दी सेवा विच जुड़े।

अमृत दे दाते आप अमृत की मांग कर रहे हैं। अज मेरे किसी वीर किसी भैन नूं अमृत छकण वास्ते बेनती कर रही हो ना, जेडे बहुते पढ़े लिखे ने अगों जवाब पता किस तरह का देंदे ने, जो सिखी तो अंदर भी होनी चाहिए है। अमृत छके तो बहुते सिख नहीं बन जाएगा, देखे ने कृपाना वाले भी सिख उन्हां तो कई गुणा वधेरे साडा जीवन चंगा है। जरा सोचिए कि अजे कलगीधर पातशाह विच सिखी की कमी सी जां उन्हां मर्जीवड़ियां दे विच जिन्हां ने अपने सिर भेट करके अमृत की दात ली। जे अमृत के दाते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अमृत की लोड़ पै सकती है तो सानू क्यों नहीं। असीं इह वी गल ध्यान दे विच रख लईए कि पातशाह ने दोवें तरह की सिखी नूं लाजमी करार दे दिता है, अंदर की सिखी भी ते बाहर की सिखी भी। गुरु खालसा जी बाहर की सिखी रखनी तो है ही बड़ी सौखी, ते जदों असीं अंदर की सिखी की गल करते हाँ इस विच बहुत कुछ अच कुछ आ जाता है। अमृत वेले का जागना, इशनान करना, वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप करना, पंजा बाणियों का नित नियम करना, रोज सवेरे गुरुद्वारा साहब जाना, अरदास के विच शामिल होना, हुक्मनामा सुन के फिर अपने दिन के कार विहार शुरू करने, सरबत के भले की लोचा अपने मन के विच रखनी, धर्म की किरत करनी, दसा नौह की किरत कमाई करनी, वंड के छकना, अपने दसा नौह की किरत कमाई के दसवंध कढ़ के परोपकार के कारजा के लाना, काम क्रोध लोभ अहंकार के विषय विकारा के विच ना आके इन्हों अपने काबू के विच करना, बहद्या उठद्या हर नाम ध्यारे की पंक्ति से चलद्या होया स्वास स्वास सिमरन के विच जुटे रहना, शाम नूं रह रास्ता का पाठ करना, सौण तो पहला कीर्तन सोहले का पाठ करना, जे ये असीं सब कुछ कर रहे हाँ तो धन ने मुबारक ने ऐसे बुखार बिंद जिन्हों तो यह सुनने को मिल जाए कि सिखी तो अंदर की होनी चाहिए है। पर जे असी केवल कह ही रहे हाँ कर कुछ भी नहीं रहे तो साडे वर्गा भेखी ते पखंडी होर कोई हो नहीं सकता। धन ने वो बड़ी हिम्मत है जिन्हां ने केस रखे ने इहने, पर पातशाह केवल केसां दे नाल संतुष्ट नहीं, पातशाह ने साफ साफ कह दिता है धरे केस पहल बिन भेखी मुड़ा सिख मेरा दर्शन नाहे तिस पापी त्यागे भेख, भाव कि तू केस तो रख ले पर जे अजे तक खंडे बाजे की पहल नहीं सकी तू तो सिख हो ही नहीं सकता, तू भेखी है पखंडी है जो सिख होता नाटक कर रहे हैं, ते ऐसे सिख नू असी कदे भी दर्शन देंदे नहीं। तो गुरु खालसा जी आओ असी पातशाह दीआं बख्शिशां लैण वास्ते खंडे बाटे दी पहल छकीए। कलगीधर पातशाह जी अमृत छके गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनदे वास्ते इस तरह अमृत दी कुट लैण दे वास्ते पंजां प्यारिआं दे पास बेनतियां करदे ने, तां सानूं तां पातशाह ने बड़ा माण बख्श दित्ता है, सानूं सिंह ते कौर दा रुतबा बख्श दित्ता है। तो गुरु खालसा जी आओ साडे नावां दे नाल सिंह ते कौर लगे ही ना, असी असल दे विच सिंह ते कौर बन जाइए। कलगीधर पातशाह दे वीर पुत्र ते वीर पुत्रियां अखवाउण दे हकदार हो जाइए। सो इह जो आपां अज दा इतिहास श्रवण कीता है किन्नियां ने इस नूं हिरदे दे विच वसा लिया है, इह पता लगना है एतवार नूं होण वाले अमृत संचार दे विच पातशाह ने बार बार कह सतगुर बाजो गुर ने कोई नी गुरे का है ना बुरा, नी गुरे का तो ना लेना भी माड़ा है। और अजे तक जिन्होंने खंडे बाटे की पहल नहीं चकी आओ छेती तो छेती पहल चक के कलगीधर पातशाह जी चार बार चार सिंह सिंगनियां सज जाई।

जेड़ी संगत बावां खड़ियां करती है ये तुहानू पता है हर दीवान विच ही संगत बावां खड़ियां करती है। इहदा मतलब की है पता है हर थां ते दसना पैंदा क्योंकि कई नवे प्रेमी हुंदे ने उह शंका करदे ने क्यों बावां खड़ियां करदे ने। संगत बावां खड़ियां करनियां एक चेतनताई दी निशानी है, ये एक जागण दी निशानी है। संगत विच सारे गुरमुख नहीं आउंदे, वह भी आउंदे ने जिहड़े वेद भी करदे ने नाले करवाउंदे ने, उहनां नूं पता लगदा संगत विच किन्नी क चेतनताई है। बाजां वाले सतगुरां दा भरिया होया वीर रस अज भी है साडे विच। आपां कोई हथियार नहीं चुकना है, एम दा हथियार चुकना है। तो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्रेम नाल आपां अपने पंथ दी चढ़दी कला दी अरदास करनी है। ओ जिथे प्रेम कम करदा उथे कोई हथियार कम नहीं करदा।

इस करके आओ सारे साथ दया करो जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिबान मनन वाले हो वो सारे बाहां खड़िया करिया करो गुरमुखो सानू बाहां खड़िया करने का कोई फर्क नहीं पैंदा पर बड़े ने ऐसे जिन्हों का मन मन जाता अमृत छकन वास्ते तुहाडे विच कई बैठे होणगे जिहड़े कहणगे मैं हुण अमृत छक लैणा खालसे की चेतनताई नूं वेख के कईआं दे मन विच चेतनताई पैदा हुंदी है जोश पैदा हुंदा है अमृत छकन वास्ते मन बन जाता उन्हां दा इस करके सारे साथ दिया करो दोवें दोवें बाहां खड़ियां करिया करो जी ते मेरा भी करदा भी दोवें खड़ियां करा पर पलस्तर लग्या हुआ दोवें बाहां खड़ियां नहीं हुंदियां ने सारे साथ दिया जे पता लगे कि किन्ना क प्रेम है सतगुरां नाल जिद्दी बैठे होणगे उन्हां नूं भी पता लग जे खालसे नाल पंगा लेके मरना

0: किन्ने कु पक्के फिर जावे तां जावे साडा सिक्खी सिरक इत्थे मन खड़े फिर गल बणी। अज जे अमृत छकदे है मूह दूजे पासे नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए पानी। एक होर गल है पानी साडी रूह दी साडे मन दी खुराक है। कथा गुरमत विचार जे ओ सानू ना मिल ते असी भी थोड़े चिर पिछों टुट जाए। इस करके संगत करदे रहो, हफ्ते बाद एक दिन रखो जिस दिन कट्ठे हो के असी गुरु घर विच एक जना ग्रंथ पढ़े ते दूजे सुन कोल ने। नियम बनाओ कुछ अपना, महीने बाद दीवान सुनो, पूर्णमासी लाहौर साहब चले जाए करो, संग्रांद है गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार साहब दीवान लगता उत्थे आ जाए करो, मसिया है साध संगत जी पैंतवीं लगती है इतने दुखनवान साहब चले जाओ, दसवीं दबलान है किड्डी वड्डी कृपा
1: श्री वाहिगुरु।
0: पटियाला ते इलाके उत्ते ते बहुत कृपा है, जिधर रू मर्जी चल जाओ बहुत कुछ होनी भी चाहिए है। गुरमुखो ये सतगुरां की कृपा है, नहीं तो इधर चले जाओ फाजिलका इलाके दे विच पिंडा च गुरुद्वारे कोई नहीं, पता ही की नहीं, पता ही नहीं किसी को सिक्खी होंगी इन्ना बुरा। कोई कावा होएगा जरा अमृतधारी होगा नहीं तो कोई लभदे क्यों नहीं। गुरुद्वारे के जेडे ग्रंथी ने कई पिंडा का तो इन्ना बुरा हाल, बिना रौल ही नहीं लगती सर इन्ना बुरा हाल साढ़े गुरुद्वारे। ये तो बहुत कृपा है, महापुरख इन्ना रंग चढ़ा गए, संत महाराज ने बड़ी जाच सिखाई है सानू, वो सानू कितने अकल सी, मत आपां नूं भी नहीं सी। उन्होंने दसना पहले सिर दास बोलू, फिर सारे भाई बोलणगे, फिर बीबिया बोले, पहला बोलना दसना। अरदास मौके भी गुरु स्तोत्र पढ़न तो बाद कहना लो भाई हुण अरदास सावधान हो गए, नहीं तो इन्ना नहीं, इन्ना भी नहीं पता कि अरदास किवें खड़े हो, इन्ना भी नहीं पता। ये महापुरख कृपा करके गए ने ते उन्हां दा रंग चढ़ाया। फिर बाबा सुखदेव सिंह महाराज आए, उन्होंने बड़ा रंग चढ़ाया। सतगुर कृपा करन बख्शिश ही संभालिए, यही बहुत वड्डी है, बड़ी कृपा कर। हुण ध्यान दिओ, कृपा सतगुरां ने कीती है, बख्शिश कीती है, संभाल के रखनी। कर्म जैसे होणगे उहो जिहा फल मिलेगा, जे उहो जिहा बीज बीजिया होवे उह वढ़ना पैंदा। द्रौपदी नूं भगवान कृष्ण कहन लगे ये तेरे कर्मां दा फल है, तू कहा सी अन्नियां दे अन्ने ही जम्मे। दुर्योधन कहिंदा कोई नहीं बदला लवांगा, आएगा समा फिर लिया जी। कहिंदी जी फिर इन्ने कपड़िया के ढेर किवें लग गए, कहिंदे द्रौपदी इहदे विच ही मैं नहीं कुछ कीता, जे इन्ने कपड़िया के ढेर लगे ने दूत तेरी साड़ी नहीं उतार सके, इहदे विच ही तेरे कर्मां दा। कहिंदी जी उह किवें, भगवान कृष्ण कहन लगे गई सी इशनान करन वास्ते, गलियां सी तेरे तन करना है, वो महापुरुष कहते कि यो कपड़ा कोई नहीं रहा तन से, थोड़ा कपड़ा दो मैं तन ढक ला बहर आ जाऊंगा। तू कहते साड़ी पाड़ के ना अपनी ऋषि को कपड़ा सुटिया सी, वो ऋषि ने कपड़ा थोड़ा जा कपड़ा लिया ते नाल ही बचन करता, तेरा कीता होया दान वधे सी। फिर ओ ही सी छोटी जी लीर कपड़ कोट ओ सारे अन्न थके दूत न पार वसांदी, ढेर लग गए फिर तेरे कर्मां दा फल है। जे तेरी तोहीन होई है ये भी तेरे कर्मां दा फल है, जे तेरी इज्जत रही है ये भी तेरे कर्मां दा। साडे कर्म वो तोड़दे ने, साडे कर्म सानू गुरु नाल जोड़दे ने। आपां जिन्ने इत्थे बैठे हैं आपे नहीं आए, सानू कोई साडा कीता होया चंगा कर्म खिच के लिया। बड़े ने जेडे इत्थे ही नेड़े तेड़े सुत्ते घराड़े मारदे हैं, बड़े ने इलाके दे विच किते थोड़ी दुनिया नहीं आए, सुत्ते पए ने छड्डो जी परां, ओ नहीं सुते उन्हां दे कर्म सुते होए ने। सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कर्म जागदे ने ते फिर ही असीं इत्थे आउंदे हां, साडे च मती चंगे कर्म जोड़ देंगे, माड़े कर्म तेनू छोड़ देंगे। तो इस करके जुड़िए आपां सारे, फिर गल बनेगी।

0: तो अज एक सौ चुरंजा जुड़े ने, इन्होंने फिर एक एक भी जोड़ने, फिर भी देखो कि वो प्राप्ति है। पढ़न करो कि महाराज कृपा करन, असी पांच पांच नूं अपनी जिंदगी च अमृत छकावांगे। जे शरीर पांच पांच नूं नहीं जे अमृत छकिया होया, असी दो दो नूं ही अमृत छकावांगे, फिर भी बहुत वड्डी प्राप्ति है। प्रेरो, लै भरावा आ जा, तैनूं दीवान च लै के चलिए, दीवान सुनाओ, लै के आओ, किसी भी महापुरखां की संगत कराओ, हौली हौली रंग चढ़ जांदा फिर आपे। शराब के रंग, नशियां के रंग आपे फिक्के पै जाएंगे, जदों नाम का रंग चढ़ जाए फिर आपे गल बन गई। इस करके जोड़िए अपना सारे फर्ज है, तो जिहड़ा कोई गुरसिक्खी का प्रचार करता है, कोई ट्राली लैके जाता है, कोई साथ संग गड्डी लैके जाता है, उहदा साथ देइए भरावा। ये चंगी गल है, जिहड़ा तू गुरद्वारा साहिब जाना है, बाणी पढ़ता है, नाल होरां नूं लैके जाना, जोड़दा, जिहड़ा भी कोई जोड़े उहनां दा सत्कार अपना करन दा फर्ज। सैं साहिब की बात जे आख्या, कहो नानक किया दीजै, शीस वड़े कर बैसन दीजै, बिन सिर सी। सो महाराज बख्शिस करन, कर्मां दा फल मिलदा। ते सदा ये अरदास करनी है, भुल के भी किते कोई माड़ा कर्म ना कर दे, उहने तोड़ दे। माड़ा कर्म ते इहो जिहा तोड़दा, फिर मुड़ के जुड़ती नहीं, ये गंढ पै जाती फिर जे किते माड़ा कर्म तोड़दा। ते माड़ा कर्म, माड़े कर्म बनते कदों ने? सतसंग माड़े कर्म की ने? सतसंग जी माड़े कर्मां की पूंजी जमा कर लेंदे ने बथेरे, पर चंगे कर्मां की पूंजी कोई विरला जमा करता है। संत बाबा सुखदेव सिंह जी ने ऐसी बख्शिश की, खुद भी तरे ने, इलाके नूं तारे है, किहड़ा पिंड है जिथे उन्हां दी जात खंड पड़ सक नहीं है, वह भी रहे ने, हुंदे भी रहे। सो सतसंग चंगे कर्मां की पूंजी जमा करिए, तां जो साडा लोक भी सुहेला हो सके और साडा परलोक भी सुहेला हो, फिर गल बनेगी। सतगुरां की बख्शिश का मेघ वरसेगा। जिन्हां जिन्हां का अज मन बनिया होवे अमृत छकन नूं, दास जी उन्हां दे चरणां च बेनती है, कल नूं पिंड बनेरा खुरद अपने नेड़े है, बनेरा कलां ते बनेरा खुरद, तुहानूं दस्सिया जी दीवान चलदे ने उत्थे दिन दे, कल नूं अमृत संचार होना 11 बजे बनेरा खुरद, उत्थे छक लो। जे उत्थे नहीं ते कल नूं रात नूं अमृत संचार होना है गुरद्वारा परमेश्वर द्वार साहिब सिखी, उत्थे छक लो। जिथे मन मने अमृत छको, मन मानिया तो हर जाए, सतगुरां की बख्शिश होवे, साडा जीवन बन जाए। बंदियों करे खुदा नजर गुरु नानक दी, गुरु नानक दी नजर बंदे नूं खुदा बना दिंदी है। बंदियों करे खुदा नजर गुरु नानक दी, अपना लै बना, बोलो
1: नजर गुरु नानक दी,
0: अपना लय बना
1: नजर गुरु नानक दी,
0: साथ लिया करो। ओ भगवान कहिंदी, पार्वती कहिंदी जी कथा सुनी अमृत, ते शिवजी भगवान कहिंदे द्रौपदी ए तैनू नींद बहुत आउंदी, तू सौ जाणा, कहिंदी जी सौंदी नहीं, कहिंदे चंगा फिर अंगूरा भरी, कहिंदी तैनू अमर कथा सुना दे। भगवान लागे थोड़ा चिर ते सुनदी रही, पार्वती सौंगी ते लाहा कोई
1: होर लै गया,
0: हाँ लाहा कोई होर लै गया। ए तुहाडा साथ क्यों मंगदा है? पता लगता है, ये नाल एकाग्रता बन गई है, ध्यान जाता है भी किथे गल चल रही है, नहीं तो कई इतने भी घराड़े मारते हैं। आ मेरे नाल एक पिछे बैठा हुंदा है, मेरे तो पहला जिहड़ा कथा करता सी, अज शुकर है पता नहीं किवें जागदा, नहीं तो सुत्ता ही दिखा लगता, कथा तो करूँ बड़ी बाहवा खड़ियाँ कर करके, तो उदों ही पता लगता घराड़े की आवाज़ स्पीकर जा जाए, बड़ी सुस्ती चढ़ती। मैं क्या सौना क्यों है? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ,

इन्हें लौंग सुपारी संत हो बन गया नाम गोविंद का ऐसी खेत। तो इस करके धन्यवाद सारी संगत का जिन्होंने आनंद माणे है। विरले विरले जागते हैं, पीजीआई चले जाओ देखो किवें रौला पैंदा, जां कोई जागदा पुराना रोगी फल भोगे करमां दे, जां फिर जागदा चंद समानी दाता खूबसूरती दा, जां फिर जां कोई जागदा चोर लटेरा कोट परछावियां दी, ओ जां कोई जागदे ने अल्लाह दे प्यारे जिन्हां दी लगी नाल रब ओही जागणगे। जागण गए वो जिन्हों के अंदर प्रेम है वही जागते। तो सात संगत तुहानों जिहड़े पहुंच के लाहा ले रहे हो, संगत का सब का धन्यवाद। बाबा सुखदेव सिंह जी हले वाले आए ने दीया ने धन्यवाद, कल भी आए थे बाबा नरेंद्र सिंह होनी और बाबा जसवीर सिंह जी जो थोड़े इलाके ही रह के गुरसिखी का प्रचार कर रहे हैं, धन्यवाद। बड़ी खुशी होंगी है जो कि कोई गुरमुखा का संग हों और इन्ना तो समय ही नहीं कि सुनिया जाए, पर कई बार समा माड़ा मोटा मिलता है, चलो उन्हें ही आनंद बन जाए। तो साध संगत धन्यवाद है, महापुरखों ने बूटे लाए हुए ने, छां असी माननी है, आनंद लेना है। महापुरखों ने सारे इलाके बूटे लाए हैं, बाबा सुखदेव सिंह महाराज की कृपा करके भाई छां माणिया करो, आनंद लिया करो। तो धन्यवाद है उन्हां दा भी अमृत छकिया जिन्होंने अज गुरु के जहाजे चढ़े ने, और उस तो बाद पांच प्यारियां दा धन्यवाद है जिन्होंने अमृत छकाया।

0: केळबोडी रंगीली टर्टी देवसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह स्वा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मरह अंते हुए सब चार कर्म धर्म सुच संयम करह अंतर लोभ विकार नानक जे मनमुख कमावै सो थाए ना पवै दरगह हुए खुआर पौड़ी आपे खानी आपे बाणी आपे खांडवर भांड करे आप समुंदे आप है सागर आपे ही विच रतन धरे आप लहाए करे जिस कृपा जिसनो गुरमुख करे हरे आपे भौजल आप है बोहिथा आपे थेवट आप तरे आपे करे कराए करता अवरना दूजा तुझै सरे सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए नाम पदार्थ पाईए अचिंत वसै मन आए जन्म मरण दुख कटिए मैं ममता जाए उत्तम पदवी पाईए सच्चे रहे समाए नानक पूर्व जिन को लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए महला तीजा नाम रत्ता सतगुरु है कल युग बोहित होए गुरमुख होवे सो पार पवे जिन्ना अंदर सच्चा सोए नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त हुए पौड़ी आपे पार से आप तात है आप कीतोन कंचन आपे ठाकुर सेव के आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुख दाता वडन सलोक महला चौथा बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे खबर ना पावही।

तीजा एक सतगुरु की सेवा करह चाकरी हर नामे लगे प्यार नानक जन्म सवार ने अपना कुल का करन उधार पौड़ी आपे चात साल आप है पांदा आपे चाटड़े पढ़न को आनी आपे पिता माता है आपे आपे बालक करे सियाणी एक थै पर बुझे सब आपे एक थै आपे करे इयाणी एक ना अंदर महल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाणी जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई से जन सच्ची दरगह जानी सलोक मरदाना पहला कल कलवाली काम मत मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी मोहे भरी पीलावा अहंकार मजलस कूड़े लभ की पी पी होए खुआर करनी लाहन सत गुड़ सच सरा कर सार गुण मंडे कर सील के हो शर्म मास आहार गुरमुख पाइय नानका खादै जाहे विकार मरदाना पहला काया लाहने आप मद मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़।

ज्ञान गुड़ सलाहा मंडी पौ मास आहार नानक एहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत तिसकी धार सत संगत स्यों मेलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बेबाणी आपे नाल गोसत आप अपदेसै आपे सुगड़ स्वरूप।

जित हर प्रभ मेरा चेते आवै, हर स्यो प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जमै होए खुआर महला तीजा, प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए, नानक सतगुर मिले है मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी, आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अभुल ना भुलै तब ही, सब साचत पावस सच थिया, आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा भरम गया, सलोक महला पंजवा, हर नाम ना सिमरह साध संग, तै तन उड़ह केह, जिन कीती तिसै ना जानई, नानक फिट अलूणी देहे, महला पंजवा, घट वसह चरनार बिन, रसना जपै गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरिय, तिस देही कौ पाल पौड़ी, आपे अक्सर तीर्थ करता, आप करे इसनान, आपे संयम वरतै स्वामी, आप जपाए हे नाम, आप दयाल हुए पौ खंडन, आप करै सब दान, जिसनो गुरमुख आप बुझाए, सो सद ही दरगह पाए मान, जिसदी पैज रखै हर स्वामी, सो सच्चा हर जान, सलोक महला तीजा, नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाई, शब्द ऐस्यो चेतना लावई, जित सुख वसै मन आए, तामस लगा सदा फिरै, अहनस जलत बिहाए, जो तिस भावै सो थीऐ, कहना किछु ना जाए, महला तीजा, सतगुरु फरमाया, कारी एह करे हो, गुरु द्वारै हो एक है, साहिब संभाले हो, साहिब सदा हजूर है, पर मैं के चौड़ कट कै, अंतर ज्योत तरे हो, हर का नाम अमृत है, दारू एहो लाए हो, सतगुर का भाणा चित रखो हो, संयम सच्चा नेहो, नानक ऐथे सुख अंदर रखसी, अगे हर स्यो केल करे हो, पौड़ी, आपे भार अठारह बनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सिंचै, आपे ही मोहे पाए, आपे करता आपे भुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहे आसमाय, जन नानक वडियाई आखै हर करते की, जिसनो तिल ना तमाए, सलोक महला तीजा, मानस भरिया आणिया, मानस भरिया आए, जित पीतै मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणे, खसम हो धक्के खाए, जित पीतै खसम विसरै, दरगाह मिलै सजाए, झूठा मद मूल ना पीचै, जे का पार वसाए, नानक नदरी सच मद पाईऐ, सतगुर मिलै जिस आए, सदा साहिब कै रंग रहै, महली पावै थाउ महला तीजा, एहो जगत जीवत मरै, जां इसनो सोझी होए, जां तिन सवालिया तां सब रहिया, जगाए तां सुध होए, नानक नदर करे जे अपनी, सतगुर मेलै सोए, गुर प्रसाद जीवत मरै, तां फिर मरन ना होए पौड़ी, जिसदा कीता सब किछ होवै, तिसनो प्रवाह नाही किसै केरी, हर जियो तेरा दिता सब को खावै, सब मोहताजी कढ़ै तेरी, जे तुधनो सलाहे सो सब किछ पावै,
जिसनो कृपा निरंजन केरी, सोई साहु सच्चा बनजारा, जिन वखर लद्या हर नाम धन तेरी।

जगत डरै जीव्या लोड़ै सब कोय गुर प्रसादी जीवत मरै हुक्मै बूझै सोय नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए पौड़ी जां आप कृपाल होवै हर स्वामी तां अपना नाउ हर आप जपावै आपे सतगुर मेल सुख देवै अपना सेवक आप हर भावै अपनिया सेवकां की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवै जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा होर केती चख चख आवै जावै श्लोक महला तीजा राम राम करता सब जग फिरै राम ना पाया जाए अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुलिया जाए कीमत किनै ना पाईया कितै ना लिया जाए गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वसिया मन आए नानक आप अमेओ है गुर कृपा ते रहिया समाए आपे मिलिया मिल रहिया

फलियो रुखड़ा अमृत जाका नाव जिन पिया ते तृप्त पई हऊ तिन बलिहार जाऊ मैं की नजर ना आव ही वत्स है हथिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा तां लह जा सिफत करी अरदास वडहंस महला।

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंदे सन बाही सन बाह एते वेस करेंदिए मुंदे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तैं सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग संदूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई आओ सुभागी नींदड़ी।

इंद्री वास कर कमाए मन की महल ना उतरे हम मैं महल ना जाए इस मन को होर संजम को नाही बिन सतगुर की शरण आई सतगुर मिले उल्टी पई कहना किसु ना जाए भणत नानक सतगुर को मिल दो मरे गुर कै शब्द फिर जीवै कोई।

गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए तिना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा एहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम ते आए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरियां बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए दूजे पाए कुरूपी दुख पावे आगे जाए गुणवंती नित गुण रवे हिरदय नाम वसाए औगुणवंती कामणी दुख लागे बिल लाए सबना का पतार एक है स्वा

0: एको सच वरतै सब अंतर सब ना करे प्रतपाला नानक एकस बिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला वड़ांस महला तीजा गुरमुख सच संयम तत ज्ञान गुरमुख साचे लगै ध्यान गुरमुख मन मेरे नाम संभाल सदा निभै चलै तेरे नाल रहाउ गुरमुख जात पात सच सोए गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए गुरमुख जिसनो आप करे सो होए गुरमुख आप वडाई देवै सोए गुरमुख शब्द सच करनी सार गुरमुख नानक परवारै साधार।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

बोलना क्या कही। कबीर साहब जी का उच्चारण किया पावन शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उपदेश करते हैं। कबीर साहब का पावन शब्द बाबा बोलना क्या कही। ए बाबा की बोलिए की आखिए। यह गुरबाणी सवाल भी है गुरबाणी जवाब भी है। गुरबाणी रस्ते विच नहीं छड़ती। गुरु साहब जी उपदेश करते हैं कबीर साहब का पावन शब्द पहली पंक्ति बाबा बोलना क्या कहिए की बोलिए की आखिए। अगली पंक्ति विच जवाब है जैसे राम नाम रव रही ऐसी बोली बोलो ऐसा बोल बोलो कि मन राम नाम दे नाल जुड़ जावे। तुसी जद भी बोलो भला बोलो मिठा बोलो परमेश्वर दा नाम बोलो ताकि मन राम नाम दे नाल हमेशा जुड़िया रवे। आओ विचार करिए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उपदेश करते हैं कबीर साहब का

पुकारी मोर खुशियों बोले चा कुमारी किस संत को किसे नाम दे रसिए को बैठांगे प्रभु दे प्यारे को बैठांगे पर उपकार दियां गल्लां होंगियां पर उपकार दियां गल्लां सुनांगे करांगे पर उपकारी सुभा बनेगा मूर्ख क्यों बोले चा कुमारी किसे मूर्ख दे कोल बैठांगे गल्लां करांगे मूर्खताई दियां गल्लां सुनांगे ते एवें ही अपना समां खराब करांगे इसे वास्ते स्याणे कह दिंदे ने मूर्ख दे नाल मत्था लाना समां खराब करना मूर्ख दे नाल बोलना।

बड़े विकार आ बहुता बोलना कई बारी लड़ाई का कारण बनता बहस च पै जाना समा खराब पर भगत जी कहते हैं

झूठा तक भूले, परया हुए सो कभू ना ढूले। कबीर साहब कहते हैं, पानी दा मटका कड़ा परया होवे वो कदी उछलदा नहीं, पर जे ओही कड़ा पानी दा अद्धा होवे ते पानी उछलदा। भाव जिहदे विच गुण हन, नेकियां हन, चंगियाईयां हन, जिहदे हिरदे विच प्रभु दा नाम वसदा है, वह हमेशा निम्रता विच रहिंदा है, प्यार विच रहिंदा है। पर जिहदे विच गुण कोई नहीं, औगण ही औगण हन, वह बंदा सगा ज्यादा उछलदा। कहिंदा मेरे वर्गा कौन, पर कबीर साहब कहिंदे ने गुणवान भला हमेशा निम्रता विच रहिंदा है, ते जिहदे विच गुण कोई नहीं वह ज्यादा अपने आप नूं बन के दसदा है कि मैं कुछ हां। भले आई नहीं पले भला बन के दसदा, भगती कोल नहीं पर दावा करदा है, दसदा है लोकां नूं मैं वड्डा भगत हां। संत ताई पले नहीं पर लोकां नूं संत बन के दसदा है, नेकी पले नहीं पर नेक बन के लोकां नूं ठगदा है। पर कबीर साहब कहते हैं, ऐ भाई पहचान करो गुणवाना दी और औगुणहारियां दी, जिहदे विच गुण हैं उहदे विच निम्रता होगी, ते जिहदे विच गुण नहीं वह एवें आकड़िया फिरेगा। पर एक गल ये भी ध्यान देण वाली है, गुरु साहब जी कहते हैं अपराधी दूणा निवे। कई बारी कोई बंदा बहुत ही निम्रता दिखाता है ते अंदरों वो भी माड़ा होता है। भाव यह है कि जिहदे विच गुण हैं वो सचमुच निम्रता और प्यार विच रहिंदा है।

फिक्का बोल जो कुछ सुना, फिक्की बोली खर भी बोली, इंसान ने मूर्ख बना दी और इंसान भी इज्जत नहीं होती उस इंसान भी जिड़ा फिक्का बोलता है खरवा बोलता है।

नमो मरण दुख जाय हो वै शिव तुख सामंदी नूर अरसों पुरसों चटी खुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी पटी है सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशा जिस पास बैठिया सो

अचल मूर्धन पव प्रकाश अमित उज कह जय कोट इंद्र इंद्राण शाहान विनय जय त्रिपवन मीर सुर नारिया सुर नेत नेत मंत्रण कह तो ताब सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णक समत भुजंग प्रयात शंद नमस्तंगा काले नमस्तंगा कृपाले नमस्तंगा रूपे नमस्तंगा अनुपे नमस्तंगा भेखे नमस्तंगा लेखे नमस्तंगा काहि नमस्तंगा जाय नमस्तंगा गंजे नमस्तंगा पंजे नमस्तंगा नामे नमस्तंगा ठामे नमस्तंगा कर्म नमस्तंगा धर्म नमस्तंगा नाम नमस्तंगा धाम नमस्तंगा जीते नमस्तंगा पीते नमस्तंगा बाहे नमस्तंगा काहि नमस्तंगा नीले नमस्तंगा नादे नमस्तंगा शेदे नमस्तंगा गादे नमस्तंगा गंजे नमस्तंगा पंजे नमस्तंग उदारी नमस्तंगा पारी नमस्तंग सोएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग पूते नमोस्तंग जुपे नमस्तंग नरकर्मे नमस्तंग नरभर्मे नमस्तंग नरदेशे नमस्तंग नरपेशे नमस्तंग नरनामे नमस्तंग नरकामे नमस्तंग नरताते नमस्तंग नरकाते नमस्तंग नरतूते नमस्तंग पूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग नरतापे नमस्तंग असापे नमस्तंग तरमाने नमस्तंग नदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग प्रवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्य नमस्तास्तरम्य नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमाजवे नमस्ता सजभे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अपेशे नमस्तंग नरकामे नमस्तंग नरबामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वकाले नमस्तास्त देवाय नमस्तंग अपेवाय नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपावणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तास्त दयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कर्तारंग नमो सर्वचंदे नमो स्वबंदे नमस्तंग नरसाके नमस्तंग नरभाके नमस्तंग नरसे नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तास्तरागे नमस्तंग सुरागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वभोगं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो योग योगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद तव प्रसाद अरूप अनूप जूआ पौआ लेखा पेखा नाम कामा देहा पेहा जीता पीताए त्रमान नदान त्रिवर्गा सरगा नीला नाद जय अजाद जन्म वर्ण पूत परण गांजा पांजा चूजा चांजा अमी कैर पीगा तंद बंद नरभूज सूज काल जाल अल्लाह जह अनंत महंत अली कै नर श्री कै नृनंद समय अगम है जम है पूत है सूत है अलोक है सोक है कर्म है परम है अजीत है पीत बाय गाय मान नदान मी कबर ए गाय भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समर्थि नदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथी नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो दान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे परपंगी परमाते समाधि भगूते गलंकंग बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम हृदय नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय प्रदे नमो योग योगेश्वर परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूप नमो शाह नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमास्तन शनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनुपे रूपे समास्तन निवासी सदा सिद्धा बुद्धा बृद करता दूरदर्दंग गंगो करता परंग परम परमेश्वरंग ब्रोजपालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्त राजी समस्तास्त कामंग तेरा जहूर जा श्री छंद जले हैं तले हैं पीता वे प्रभु अजुआ देश अपेश है भुजंग प्रयात छंद
अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूपे नम सर्वमान्य समाधि नदारे नमा स्वंग नरनाथी नमा स्वंग परमाते नमा स्वंग गंजे नमा स्वंग पंजे नमा स्वंग काले नमा स्वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो महामाय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वप्रीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वयंत्रं नमो सर्वदृष्टं नमो सर्वपरेशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगीय लंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समर्थं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे गुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हरिदिशा जग निवासी चारपट छंद तल प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे अखल जोगे जल भोगे जल राजे अखल साजे अखल धर्म अलग करम सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राण सर्वं प्राण सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद तल प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त अयोन पुरुष पारु सर्व मंत्र मान देव देवाधारु सर्व कालिक सर्व कालिक सर्व गोपन काल जतर ततर विराजी अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जय जय कर ब्रह्म न रेख आदि पुरुष उदार मूर्त अयोन आद शेख देश और न देश जा कर रूप देख न राग जतर ततर दिशा विशा हुई फैल अनुराग नाम कामहीन बेखत दामू न जाए सर्वमान सर्वत्र मान स्वयं एक मूर्त अनेक दर्शन केन्द्र बन एक खेल खेला खेल खेल न अंत को पर एक देव देव न जाने जे बेदर्क देव रूप रंग न जात बास जाने ते जेव आत्मात न जात जाकर जन्म मरण दही न चक्कर बकर फिर चतर जाक मान ही प्रतीन लोक चौदह के बिखै जग जापी दे जाप आदि जीवन आदि मूर्त थप सब जय थाप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरुष पार सर्व सूरज ओम प्रवर्ण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धर्म धाम सुपरम भूतला सपेश रंग रंग न रंग जग जापना नाम गर्व व्यंजन दोष भंजन मुक्त दायक काम आप रूपम एकान सुदेक पुरख भूत गर्भगंजन सर्व पंजन आद रूप सूत अंगहीन अपंग नातम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व त्यान पेक सर्व सहायत्र जानी जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कह नेत पाखर नेत गोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वचित मद पार शांत प्रसाद गुणगण उदार महिमा पार आसन अपंग उपमान अंग अनुप प्रकाश ने

करणालय है, अलकालय है, फल खंडन है, मैं मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ववारण है, कृत के धरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश है, सर्वनाश है, करण कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मांड से है, खलखंड से है, परते पर है, करुणा कर है, जप जप तप तप है, कृता कृत मृत मृत है, मृत मृत करुणा कृत है, कृता कृत करणी कृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत मृत अमृत है, जप कृत मृत अमृत है, निर्नायक है, खलकायिक है, विश्वंतर है, करुणालय है, निर्मनायक है, सर्वपायिक है, पाव पंजन है, अरगंजन है, रप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरदार है, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जस के जस है, भुजंग प्रयाद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारि नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलयकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादंग भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांक बंके पंगी स्वरूपे अनंगीय नामे त्रिपंगी दृकाले अनंगीय कामे एक अक्षरी शंभ अजय अलय पय भय पू अजुवनाश अकाश अगंज पंज लख पख अकाल दयाल लेख पेख अनाम काम घाट नाथे प्रमाथे योनि मोनि नराग नरंगे नरूपे नरेखे अकर्म परम गंजे लेखे बजंग प्रयाद नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणासी अगंजलो नामे समास्तल निवासे निरकामंग भूते समास्तल स्वरूप कर्मंग प्रणासी सधर्मंग भूते सदा सचदानंद सदर सतरंग प्रणासी गिरिमलक निंदा समास्तल निवासी अजाय भूते गजाय मैं हरियंग करियंग करिमल रिहे मैं चतर चक्र भरती चतर चक्र पहुते सुयम पहु सुगम सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग प्रभुते चतर चक्र भरती चतर चक्र पहुते सुयम पहु

करया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। चौपाई साहिब पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती। चौपाई हमरी करो हाथ दर रक्षा। पूर्ण होए जत की इच्छा तब चरणन मन रहे।

सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु न पाया सतगुर त पाया सहज सेती मन वजियां बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्द गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु न पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे।

हर तुम मैं जोत रखी दादू जग मैं आया। हर जोत रखी तुद विच दादू जग मैं आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाई जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचया जोत राखी दादू जग मैं आया। मन जाऊ भया प्रभाग में सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल मित सखिए सुख दुख ना दया पे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना प्रजा पे।

0: श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha at Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

नानक निभ ही नाल अष्टपदी रमैया के गुण तेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सी गारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जो वन भोजन सुख सूध बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श ले हो तव नानक सीझै जे प्रसाद धारु पर सुख वसह सुत भ्रात मीत बनता संग हसह जे प्रसाद पिवे शीतल जला सुखदाई पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ वसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संगरचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काढ ले हो प्रभ आपे आद अंत जो रखनहार तिस स्यों प्रीत न कर गवार जा की सेवा नव निंद पावे ता से मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे जा की टहल पावे दरगह मान तिसे बसारे मुग्ध पजान सदा सदा एह भूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साथ छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्दव प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मह पत्र विकराल नानक काट ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शब्द नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह अथाह जाकर अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे करगह लेहो ओढ़ निभावे कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कहिया तव समझै भोरा कहाँ बिसन पद गावै गुंग जतन करै तव पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तुहा उस गवन करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा करै संग सहाय सुआवे न चीत जो बैराई ता जो प्रीत बलुआ के गृह भीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूब कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लाग अन सुआए नानक कहो न सी जाए बिन नावे पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण विखोट गवावे एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे जिस ठाकर स्यो नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कार जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहो अपनी देरास खात पीत बरत अनंद उलास अपनी अमान कछ बहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होए जिसकी वस्तु तिस आज्ञा रख है प्रभ की आज्ञा मन है मत है उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओह मन पछतावै जो दिसै सो चल नहार लप रहो तह अंध अंधार बटाओ स्यों जो लावै नेह ताको हासन आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया, मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोगन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखास्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर्भ को रह। मिथ्या नेत्र देखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल, देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आर जा, साध बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत, ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन। बिरथा बिहाए मेघ बिना जो के ती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कृपन के निरात नाम। धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कुमावत, मन नहीं प्रीत मुख गंड लावत। जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेख न काहू भीन। अवर उपदेश आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिस कह अंतर बसै निरंकार, जिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप है माने। आप है आप करत में बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रहत, सब कच ज्ञान आत्म की रहत। जिस भावै तिस लय लड़ लाए, थान तनंदर रहया समाय। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जब नानक हरि सलोक। काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिसको सिमरत परम दत पाव है। जय प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै ध्याए सदा मन अंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ तह सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा ध्याई है ध्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावै, तिसै त्याग कत अगर लुभाव है। जय प्रसाद सुख सहज सोई जय, मन आठ पहरता का जस गावी जय। जय प्रसाद सब को मान, मुक्ता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, नानक पथ से ती घर जावे। जय प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तिर ओला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आभूषण पहरे जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कौ कबहू न बिसारी। जय प्रसाद बाग मिल धना, राख प्रोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सद तिसै त्याई। तिसै त्याई जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै। जय प्रसाद करह पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ कौ सास सास चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रह, गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुन कर्ण नाद, जय प्रसाद पेख है बिस्माद। जय प्रसाद बोल है अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सह जय बसना। जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है। जय प्रसाद परम गत पाव है, जय प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।
जेह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल न मन हो विसार जेह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जेह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस जान मन सदा हजूरे जेह प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू ता सोराच जेह प्रसाद सब

प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्वनिधान प्रभ तेरी मया, आपहु कछु न किन्हु लया, जित जित लावहु तित लगै हर नाथ, नानक किनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए, सुन मिता नानक बिनवंता, साध बिना की अचरज कथा अचतरी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली पोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिले, साध कै संग सदा कर फुले, साध कै संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग नकत हूं तावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग सजा सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कब हूं तावे, साध कै संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर रह, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग नांदर था जावै, पार ब्रह्म साध हृद वसै, नान कुदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जानह, जेता सुनह तेता बखियाने, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसुदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का

जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्मज्ञानी के नहीं अभिमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंच दे ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन भये, नानक दिन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी सगल कीरीना, आत्मरस ब्रह्मज्ञानी कीना। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्मज्ञानी का नहीं धंधा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्मज्ञानी का होय सो पला, ब्रह्मज्ञानी सो फल फला। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नान

नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की

ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अधाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का कवि।

नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाहि रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्रय रूप न पेखै नेत्र साधु की टहल संत संग हेत कर्ण न सुने काहू किंदा सब ते जान आपस को मंदा गुर प्रसाद दुखिया पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होय भिन्न कर्म करत होवै निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ावर नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसा सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमृत बूझै मूल सूखम मह जानै अस्थूल चौं वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वर्णा में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उरतारै पस प्रेत मुग्ध पात्र को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान काहू जुगत कितै ना पाइया धर्म नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी दिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रख है तैसा तन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभ भावै सोई पुन होग पसरो आप होए अनंत तरंग।

लोक उसत कर है अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट बन पर में उदासी।

नाम ते आवे है, नानक करते का अंत न पावे है। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेगात मनकोर, कई कोट परदर्व कह रहे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे। जित चित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाना करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पात्र बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सचिर सूर्य नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल सामग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्थ शास्त्र, कई कोट किए

नरक किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत छूकर मृगाच सब ते नेरा सब हूते दूर नानक आप अलिप्त रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मरे कई कोट बोजोनि फिरे कई कोट बैठते ही खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तै तह राखे नानक सब किच प्रभ कै हाथे कई कोट पहे बैरागी राम नाम संगतिन निवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मह पार ब्रह्म लानते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांग सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जोत किनो विस्तार कई बार पसरो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताका अंत न जान को आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास

नानक गर्भ गले अष्टपदे जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत आपस कहो कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे धन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कछ संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतरता का होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत छिन मह होय जाय भस्मंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटा अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हम तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कौ नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे सह सिख ते लख कौ उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजै स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो कि कीनो सु अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बुझे देख करे विवेक आप है एक आप है अनेक मरे न दिस आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश समझे आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग आपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरले तीना भला भला भला तेरा रूप अति सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटे संत कै दुखन जमते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक न पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन तान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरे संत के दुखन ते मुख पवे संतन कै दुखन काग जो लवे संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जले संत कै दुखन सब को चले संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचा

संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता ओए पी गत पाए। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी। संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख के टरे। संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए। संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी कते काज ना पहुँचे। संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर ते सोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किछ ना है, आपन बीज आपे ही खाहे। संत के दुखी को अवन राखन हार, नानक संत पावे तै ले उबार। संत का दुखी यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ही धन नहीं त्रापे। संत का दुखी छुटा अकेला, ज्यों बुआड़ चल खेत माहिं दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा तहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दोख न पृष्ठ कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेट कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार। प्रभु की उस्तत करहो दिन रात, तिसह त्याग हो सास गिरात। सब कछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार। जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ भागी नान।

सोई लगे। जिसनों कृपा करे वड भागे, नाम जपत पावे विश्राम। नानक तिन पुरख कौ उत्तम कर मान, जो किछ करे सो प्रभ के रंग। सदा सदा दसे हर संग, सहज सुभाए होवे सो होए। करणे हार पुछाणे सोए, प्रभ का किया जन मीत लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिससे उपजे तिस माहे समाए। ओए सुख निधान उन्हों बनाए, आपस को आप दिनो मान। नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जाननहार। जाके सिमरन उजरिय, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार, गोपाल सर्व दिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जे सौ प्राणी लोचे कोय। जिस बिन नाही तेरा किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल घट सो है। धनवंता होए क्या को गर्व है, जा सब किछ किसका दिया दर्ब है। अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे। जे को होए वह दातार, किस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हाँ रोग, नानक सोजन सदा अरोग। ज्यों मंदिर को था मैं थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। ज्यों पाखान नाव चढ़ तरह, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाछो धूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे दिल लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ देव नहार, अवर त्याग तू तिसह चितार। जो किछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे आजान। कौन बत आई तेरे संग, लपत रहो रस लो भी पतंग। राम नाम जप हृदय माही, नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संतह संग चाल, अवर त्याग दिख्या जंजाल। धन धन कह सब कोय, मुख उज्जल हर दर्ग है सोय। एह व्यापार विरला व्यापार, नानक ता कह सद बलिहार। चरण साध के धोए धोए पियो, आप साध को अपना जियो। साध की धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइया कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनक बिघन ते साधु रखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गही संतह दर आया, सर्व सुख नानक तेह पाया। मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, प्रभु लिखे का लहना पाहे। सब किछ तिसका ओ करना जोग, तिस बिंदु सर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रैनी, सब ते ऊच निर्मल एह करनी।

की चरण पाओ, नानक कै मन इह नराव, मनसा पूर्ण सरणां जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फो, तिसका मंत्र न जाने होर, अनंद रूप मंगल सब जाकै, सर्व थोक सुनिया है घर ताकै, राज महराज जोग मह जोगे, तप मह तपी सर ग्रस्त मह भोगे, त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया, जाके लीला की नित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत, समत ज्ञान ध्यान जिन दे।

बाद प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै

सास सास सुमारे, अपने जनका पर ढाक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत्र रख है।

एक है आप नहीं कछ परम सैस सियाणप लिया न जाइए नानक ऐसा गुरबट भागी पाइए सफल दर्शन पेख पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करन आघाने मन संतोष आत्म पतियाने पूरा गुरा क्यों जाका मंत्र अमृत दृष्ट देखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेवा एक पुस्तक अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोलना पहुंचित प्राणी अग्न अगोचर सब निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाए अनक भगत बंदन नित करहे चरण कमल हृदय सिमरहे सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोय अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन मह राखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठांड वरताई अंध भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिते अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे भौ चूका निर्भौ हे वसे सगल व्याध मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी चित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण ही ओही कला तहार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए।

नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चालै बिन भजन, दिखया सगली चार, हर हर नाम कमावन, नानक एह धन सार। अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत बिसार हो, चरण कमल हृदय में उरतार हो, करण कारण सो प्रभ सिमरथ, दृढ़ कर गह हो नाम हर वथ, इहो धन संत हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस रख हो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहे, जिस धन को चार कुंठ उठताव है, सो धन हर सेवा ते पाव है, जिस सुख को नित बच है मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी, अनक उपावे रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्ब निधान है हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान, मन प्रबोधो हर कहनाई, दह दिस धावत आवै ठाए, ता को बिघन न लागे कोए, जा कर दे बसे हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख।

होए उधार। हर हर सिमर प्राण आधार, अनक उपाव न छूटन हारे। सिमरत शास्त्र भेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए। मन बंछत नानक फल पाए, संग न चालस तेरा तना। तू क्या लपटा है मूर्ख मना, सुत मीत कुटुंब अर बनता। इनते कहो तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार। इनते कहो कवन छुटकार, अस हस्ते रथ असवारी। झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझै न बिगाना। नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने। भगत बिना बहु डूबे स्याने, हर की भगत करहो मन मीत।

भक्ति लाए। अष्टपदे जात जन जाच प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्याव। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नितनीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे दुर्ला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन निर्लाग। बड़ भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होय दयाल सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिस्तरा जे काल न पाने सो क्यों बिस्तरा जे किया जाने। सो क्यों बिस्तरा जिन सब किस दिया सो क्यों बिस्तरा जे जीवन जिया। सो क्यों बिस्तरा जे अग्न मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिस्तरा जे बिखते काढ़ जन्म जन्म का टूटा गांढ है। गुर पूरै तत यह बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपो हो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए त्रिया संसार बिन भक्ति तन होती छार। सर्ब कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो हो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर इही सुआओ। नेत्र हो पेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग। एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनक राग भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। भली सुकरणी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक पर।

फिर जाप। अष्टपदि जब अकार यह कछन दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्ष शोक कहो किसे व्यापत जब अपन आप आकार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम अपन खेल आप वर्ती जा नानक करना हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक हर अग्न पार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहज स्वभाई तब शिव सतत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कवन निड्र कवन कत डरे अपने चलित आप करने हार नानक ठाकुर अग्न अपार अब नासी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ बिनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसे भूत कवन तृप्तावै करण करावन करना हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद देव कहाँ को चीन जब आपन आप उतार तो सगन अपसगन।

आप जय अचल अशेद अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप कौ आपै आदेश तेह गुण का नाहीं प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप पतियार तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानका तुझ कौ आप है पहुँचा जय आप रचयो प्रपंच अकार त्यों गुण में तीनों विस्तार पाप पुन कह पई कहावत।

अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच है तो नानक एक है जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दोहूं पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतुक करह अनद चो।

अथाह अगंत अतोलै, ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदे आप कथा आप सुनने हार, आप है एक आप विस्तार। जंत पावे तां सृष्ट उपाय, अपने पाणे लय समाए। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा को प्रभ जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो संदर्शी तत् कविता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंत्र सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख तिसको

पूर्ण पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर्जामी रहो व्याप। प्रतपालै जीअन बहु पात, जो जो रचो सो तिसै त्यात। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करहे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास करमान्या, करनहार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न वृति जाए। सेवक कौ सेवा बन आए, हुकम बूझ परम पद पाए। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर भय निर्वैर, अंदन पूजे गुरु के पैर। एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पहर प्रभ देखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुनो उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो। हलत पलत दुए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर धार। पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन बस है तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपहो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच व्यापार करहो व्यापारी, दरगह निभ है खेप तुम्हारी। एक का टेक रखो मन माहे, नानक बहर न आवह जाहे। तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उबरै राखन हार ते आए। निर्भौ जपै सगल भौ मिटै, प्रभ कृपा के प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै।

उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बस सो होत निहाल, ताके नित न आवत काल, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया।

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक एह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरह गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित त्याग हो त्रंग, संत जना की धूल मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर धन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित जित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमली कलाल एह रत्न। संत कुमावत होत उधार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन अंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महान कै माथे, नान पोदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन।

कहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु हरि नानक निधि खेप हमारे प्रभु की औसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान हर धन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत्का वेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोय सब जुग मह ताकि गत होए गुण गोविंद नाम तुम बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृतता की वाणी एक नाम मन मन

कुछ लिखारी ए दिन 24 जून 1607 नू वापरिया लिखते हन। नानक शाही कैलेंडर मुताबिक ए दिन 2 जुलाई का पक्का कर दिता गया है। एक मंजिली बिल्डिंग की संपूर्ण सेवा बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी ने अपने हथी की। यह बिल्डिंग 1609 ईस्वी पहली बार तैयार हुई। सिखी विरसे नाल जुड़े श्रोतियों, अज जिस जगह श्री अकाल तख्त साहिब जी की इमारत सुभाए मान है, यह एक खेड का मैदान होया करदा सी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपना बचपन इस जगह से खेड के गुजारिया है। इस ही स्थान से पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी नु गुरगद्दी बख्शिश कीती सी।

गुरु हरगोविंद साहिब जी ने मीरी पीरी दा फलसफा दो निशान साहिब लहरा के इस तखत ते ही प्रगट कीता सी। कुछ एक लिखारी भाई गुरदास जी नू अकाल तख्त दा पहला जथेदार भी लिखते हैं, पर यह तथ्य खोई दी तकड़ी ते नहीं तुलदा, क्योंकि इस अकाल दे तखत ते सतगुरु हरगोविंद साहिब जी आप बैठ के फैसले करया करदे सन। इसलिए भाई साहिब नू मुख सेवादार थापिया दुरुस्त जापता है, ना कि जथेदार।

गुरु हरगोबिंद साहिब जी 1634 ईस्वी तक अमृतसर रहे सन। इस दौरान ओ तख्त साहिब दी कारवाई नूं अमृतसर बैठ के चलांदे रहे। इस तों उपरांत 1635 तों 1696 तक पृथ्वी चंद अते उसदे परिवार दरबार साहिब ते काबज रहे। 17वीं सदी दे आखरी दहाके विच बाबा पृथ्वी चंद दा पोतरा हरी जी सेवा निभा रहे सी। सतवें ते अठवें पातशाह कीरतपुर साहिब रहे। नौवें नानक गुरु तेग बहादुर साहिब गुरगद्दी संभालण मगरों बकाला, जिस नूं हुण आपां बाबा बकाला दे नां नाल जानदे हां, चक नानकी अते पटना विच रहे। दसवें पातशाह चक नानकी पौंटा साहिब आनंदपुर साहिब तलवंडी साबो अते नदेड़ विच रहे। इस दौरान ओ सारे अकाल तख्त साहिब दी कारवाई इन्हां थामां तों चलांदे रहे।

श्रोत्यो पिछले कुछ समय तो श्री अकाल तख्त साहिब दी प्रभु सत्ता जथेदार दी पद पदवी बारे कई तरह दे परम भुलेखे पैदा करन दियां अखौती खो आधारित कुचालां चलियां जा रहियां हन। इस विषय दी पंजाबी यूनिवर्सिटी दे प्रोफेसर अते उग्गे सिख विद्वान डॉक्टर बलकार सिंह दी रचित पुस्तक अकाल तख्त साहिब जोत ते जुगत छपी है। असीं इस किताब विचों चोणवें अंश टिप्पणियां सहित आप जी नाल सांझे करन जा रहे हां। डॉक्टर बलकार सिंह अपनी पुस्तक दे पन्ना 44 उपर लिखते हन कि कुछ विद्वाना वालों जिस तरह इस एक्ट अधीन जथेदार अकाल तख्त साहिब नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा तनखाहदार मुलाजम ऐलान के भंबल भूसा उत्पन्न करन दे जतन कीते जा रहे हन। उन्हां नूं सुहिरद ठीक सेध विच अते सिख प्रबंध अनुसार प्रवान नहीं कीता जा सकता। असलियत है कि अकाल तख्त साहिब दे सही प्रसंग नूं सामने लियाउण दा जतन करन दी थां प्राप्त ढांचे नूं ढाउण दी असहितमंद नीति राजनीतिक कोशिश जां उलार अकादमिक अभियान किसी तरह भी अकाल तख्त साहिब दी प्रसंग स्थापना दे हक विच प्रवान नहीं कीता जा सकता।

जे खोटे मन नाल तीर्थां ते नौन तुर पए ते शरीर विच कामां दे चोर भी टिके रहे तां नौन नाल इक हिस्सा भाव शरीर दी बाहरली मैल तां लै गई पर मन विच अहंकार आदिक दी दूनी मैल होर चढ़ गई। तुम्मी वाला हाल ही होया, तुम्मी बाहरों तां धोती गई पर उस दे अंदर निरोल वेस भाव कुड़त्तन टिकी रही। भले मनुख तीर्था ते नौन तो बिना ही भले हन, ते चोर तीर्था ते नाके भी चोर ही।

इस अकाल तख्त साहिब दे फलसफे विच मेरी अते तेरी इको थां अते इक जुज विच इकठियां हन। ए इस फलसफे दा आदर्शिक शिखर है। ए सारे नुक्ते लंबी तफसीली तकनीक मंगदे हन, जिस नूं विचारन लई इक वखरे प्रोग्राम अलिकण दी लोड़ है। सिक्खी दे घेरे विच कुछ इंस्टीट्यूशन अजिहे हन जो इस फलसफे दे सोमे भी हन ते इसदी ताकत भी हन। ए इंस्टीट्यूशन हन गुरु ग्रंथ साहिब, अमृत, अकाल तख्त साहिब, पंज प्यारे अते सरबत खालसा। उंज अजोकी हालत इस विच श्रोमणी अकाली श्रोमणी अते दिल्ली अते होर गुरुद्वारे कमेटियां नूं भी पंथ दीआं नवीआं इंस्टीट्यूशन विच शामिल करन दी कोशिश कीती जांदी है, पर साडी निगाह विच ए इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन संस्थावां हन। अकाल तख्त साहिब दा फलसफा दुनिया विच सब तो वध लासानी है। दुनिया दे किसे धर्म किसे कौम कोल ताकत दा इहो जिहा मरकज नहीं है। गुरु साहिब ने ए एक अजही इंस्टीट्यूशन प्रगट कीती है, जिस नाल सिख कौम नूं मीरी पीरी दी हस्ती दा मरकज अते दरबार हासिल हो गया है। अकाल तख्त साहिब नूं अपना इष्ट मनन वाला सिख अपने आप अकाल पुरख दी फौज दा हिस्सा बन जांदा है। अकाल तख्त साहिब सिख दी शान है, आन है, मान है ते जान है। इस तख्त नाल संबंधित होना अकाल पुरख दी जानी उचेरी दुनिया दा

सारे रल के गुरबाणी का निकल करिए। सतगुरु तो सानू नाम की दात मिलती है, ते नाम का अर्थ है ज्ञान समझ। जिहड़ी संगत बाहर है जिथे तक आवाज आउंदे आउंदे बाहर सड़क ते बहण दा सुभाअ है जिन्हां नूं फुटपाथ ते उत्थे थोड़ा जिहा सौखा बैठा जांदा जिवें कुर्सी ते बैठे होईए, उन्हां नूं बेनती है वी अज पड़दे नहीं खोलणे, क्योंकि वढाई दा काफी जोर है। सारे जिमीदार जिहड़े हन जी साडे फसल की वढाई में लगे हुए ते नाल अज मौसम भी खराब सी, कई जगह बरसात भी सी, सारा दिन ही मौसम खराब रहा, शाम नूं थोड़ा जिहा ठंड होया। सो इस करके अज संगत पंडाल दे विच ही बैठ सकती है, पड़दे खोलण की खैर जरूरत ना पवे। सो सारयां नूं बेनती है जिहड़े बाहर हन वो अंदर आ के संगत सतगुरु जी दे रल मिल के दर्शन कर, बाहर ना बैठो अंदर आ जा। सारियां संगतां रल के आओ, आपां पढ़ीए मेरे रब जी, तुहाडा ज्ञान साडे दुख दूर करन वाला है, तुहाडे निजमां नूं समझ के ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਰੇ ਜੀਰੋ ਭਾਈਓ, ਸਾਰੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਭੈਣੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲਾਂ।

रैत रैत रह जाए बिकारा, रैत धर्म सिंह को सारा, रैत बिना हद गत न होई, रैत बिना पल कहे ना कोई, इनू रैत तो बिना किसी ने भला कहना ही नहीं गा, रैत बिना ना सिख खावे, रैत बिना दर चोटा खावे, रैत बिना जग मोतर माई, रैत बिना नर नरके जाई, रैत तो बिना सारे नरकां में जाएंगे, रैत बिना तनखा ही जानो, रैत बिना जड़ भूत बखानो, रैत तो बिना एक बंदा भूत ही नहीं आई है भूत दी। ते अंतली लैण विच सह फरमान करदे हन, रैत बिना सुख कबू न लहे, ताते रैत तो दृढ़ कर गए। जे तू गुरु दी रैत तो टुट के ते आखे मैं कोई आत्मक सुख मालना, ते किते सुफने च सुख दी पालना करियो सुफने च। मारे कहिंदे गुरु बचन सिओ टूटा जाए तां तो दरगाह मिले सजाए। ओना नू दरगाह दे विच सजावां मिल गईआं जेड़े गुरु दे बचना तो टुट जाणगे। ते गुरु के बचन की आ, प्रथम रहत जह जान ठंडे की पौल छकै, सोई सिंह प्रधान अवर ना पौल जो लह। सब तो पहली रहत सिंह दी ए है कि ओ खंडे बाटे दा अमर छके। फिर गुरु की रहत रखे गुरु की मर्यादा अनुसार, जे अपने जीवन नू टालांगे ते सिखो साडी जिंदगी विच कदी कोई टोटा नहीं आएगा, ते सानू किसे भी दुख दा सामना नहीं करना पएगा। ते रात नामे च बचाउंदे आ, ओए सिख सिर टोपी तरै, सात जन्म कुश्ती हो मरै। सिख दा पुत टोपी पावे सात जन्म कोड़ा होके मरेगा। केड़ी मां जड़ा आंदी मेरा पुत सात जन्म कोड़ा होके मरे। मां ते बच्चे दियां सौ सौ सुखना सुख दी है। जे अज भाई लगा परोपकारी दा आपां सलाना जोड़ मेला मना रहे ना, अज गुरु के बचन पल्ले बन के खड़ियो, सिरा ते कदे भुल के टोपी ना पायो। टोपी देख नवावे सीस, सो सिख नरकी बिसवे बीस। मीणा और मसंदिया मोना कुड़ी जो मार।